इंसान है और दीन की बुनियाद क्या है? अकीदा है, और अकीदे की बुनियाद तौहीद है, और तौहीद की बुनियाद अल्लाह ताला के असमा, अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला के सिफात। नंबर दो, असमा उल हुस्ना और सिफात उल उला को जानना दीन की बुनियाद है, दीन की बुनियाद को जानना है। और याद रखें, जितना बुनियाद इंसान की मजबूत होती है उतना ही उसकी इबारत मजबूत होती है। आप दीन समझना चाहते हैं, अच्छी बात है, इसमें खैर है, लेकिन आप दीन की बुनियाद ही ना समझें तो फिर इसमें कोई खैर नहीं। मेरे भाई याद रखें, आप बेहतरीन नमाज पढ़ लें, बेहतरीन हज कर लें, लेकिन आपको अकीदे की समझ नहीं, अकीदा क्या होता है, तौहीद क्या होता है, आपको इसकी समझ नहीं है, तो फिर नमाज का कोई फायदा नहीं और हज का भी कोई फायदा नहीं। वजह क्या है? अगर अकीदे में गलती साबित हो जाए, अकीदे का बिगाड़ इंसान के अहमाल को इकारत कर देता है, अमल जाया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अकीदे के बिगाड़ का नाम है कुफ्र, और कुफ्र के साथ कोई भी नेक अमल, कोई भी अमल ठहरता नहीं है, अल्लाह ताला का काबिल कबूल नहीं है। इसलिए दीन की बुनियाद को जानना बहुत जरूरी है, और दीन की बुनियाद है तौहीद, और तौहीद की बुनियाद अल्लाह ताला की जात और अस्मा और सिफात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने इस इल्म की अहमियत को समझा है और इस इल्म को हासिल किया है और उसके लिए जद्दोजहद की है, उसकी बुनियाद मजबूत हुई, और जब उसकी बुनियाद मजबूत हुई तो फिर दीन की इमारत जो वो कायम करना चाहता है, जिस पर वो अमल करना चाहता है, वो भी मजबूत रहेगी। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, जो शख्स अपनी बिल्डिंग और इमारत लंबी करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी बुनियाद मजबूत करे, और बुनियाद का एहतमाम इमारत की लंबाई से ज्यादा करे। अगर वो उस इमारत का क़याम चाहता है कि लंबे अरसे तक वो इमारत उसके काम आए। फल अमाल व दराजात बुनियाद, इंसान के अमाल और इंसान के दराजात जो है, ये सब क्या है? सारी ये इमारत है इंसान के लिए, इमारत है इंसान की, नमाज है, रोजा है, हज है, जक़ात है, हुस्न अखलाक है। इंसान क्या कमाता है दुनिया में, इंसान के अखलाक क्या है, ये सारे के सारे क्या है? इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये क्या है सारे, ये इमारत है। वह असास हल ईमान, और इस इमारत का असास और इस इमारत की बुनियाद क्या है? ईमान है। वह मदकान असास वसीकन हमल बुनियान व तला अली, और जब ये बुनियाद मजबूत होगी तो फिर इस पे इमारत भी मजबूत होगी, फिर आपको कोई परेशानी नहीं, कोई परवाह नहीं, आप इमारत जितनी बुलंद करना चाहें आप परेशानी नहीं होती। लेकिन जब आपकी बुनियाद ही मजबूत ना हो तब आप इमारत को बुलंद करने से पहले आपका दिल धड़कता है कहीं सारे के सारे इमारत न गिर जाए।